0: क्योंकि
1: हाँ।
0: वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास 1 मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
0: बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था।
0: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
1: क्या हुआ अंकल?
0: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
0: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
0: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं।
0: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या
0: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
0: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
0: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
0: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
0: चुप कर मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: Radio Mirchi, it's hot.
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब इस महफिल में वक्त है
0: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आधुनिक हिंदी कविता के एक बड़े ही प्रमुख कवि और कथाकार से। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि बड़े सोशलिस्ट आइडियाज पे लिखा करते थे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और मेरी एक बड़ी ही पसंदीदा कविता है केदारनाथ जी की, जो उनकी विजुअल राइटिंग स्किल्स को दर्शाती है। केदारनाथ जी लिखते हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। वाह जी वाह, दिल खुश कर देता यार, इमेजरी हो तो ऐसी। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab, mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.
6: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और अभी हाल ही में अंकुश कुमार जी की लिखी हुई एक बड़ी अच्छी कविता मेरे हाथ लगी माओं के बारे में, तो मैंने सोचा आपको नजर करूं। माओं की बात केवल मदर्स डे पे थोड़ी ना होनी चाहिए। कविता का शीर्षक है माए। मैं अपने दोस्तों से मिलकर खुश होता हूं और उनके साथ करता हूं बात घंटों तक फोन पर। पिताजी के साथ उनके दोस्त आते हैं कई बार दफ्तर से, गली मोहल्ले के यार दोस्त, कॉलेज के दिनों के दोस्त भी अक्सर आते रहे हैं घर। उन सब से मिलते हुए मैं अक्सर मां की सहेलियों के बारे में सोचता हूं। कहां होंगी वे सहेलियां जिनके संग मां जाती होगी स्कूल, खेला होगा खो खो और स्टॉपू, किसी फिल्म हीरो के सपने जिनके संग देखे होंगे। गली मोहल्ले की ज्यादातर औरतें मां को दीदी बोलती हैं, क्योंकि मां उन सबसे बड़ी है उम्र में। मैं तब सोचता हूं जब मां की सहेलियां बुलाती होंगी मां को नाम से, तब कैसे दौड़ पड़ती होंगी वो। लेकिन न जाने कब से वो तरस गई हैं किसी पुराने परिचित से अपना नाम सुनने को। मैं ये सब सोचता हूं हर बार मां के लिए और उदास होता हूं। मां हालांकि उस उदासी से उबर गई है जब वो 19 बरस की आयु में अपनी सहेलियों से दूर हो गई थी। राखी पर मामा के घर जाते समय मां हर बार लौट आती है अगले ही दिन, और तब मुझे बस यही लगता है कि हर बार माओ को ही क्यों लौटना पड़ता है इस मर्यादा के साथ कि जाओ अब वही है तुम्हारा घर। अगर अपनी माओ के जीवन में हम झांके तो एक वेदना दिखती है जो बड़ी बाद में महसूस हुई। बहुत बड़ा होने के बाद ये महसूस हुआ कि मां की वेदना क्या है। बहरहाल आपको अपनी माँ के बारे में सोच के क्या कोई कविता, क्या कोई नगमा याद आता है? मुझे बताइए मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि मैं आपको नजर करूं मेरी एक बड़ी पसंदीदा गजल। ये गजल ओरिजिनली मेहदी हसन साहब ने गाई और क्या गाई दोस्त, मतलब वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गजल्स। और इसका जो मैसेज है, इसका जो मतलब है, मानी है, इतना प्यारा है कि दिल छू लेता है, मेरे दिल के बड़े करीब। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था,

0: Mirchi, it's hot.
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
4: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot,

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, किसी ट्रेन स्टेशन पे, किसी एयरपोर्ट पे कोई शख्स दिखा होगा जिससे आंखें लड़ी होंगी, और ऐसा हुआ होगा कि यार क्या इंसान है, इससे जाके बात करूं क्या, या फिर मुझे तो ये मेरी बीवी जैसी लग रही है ना, ऐसा तो कुछ दिल में उठता है कभी कभी किसी को देख के। लेकिन फिर आप सोचते हो कि चलो दूर से देखते हैं इस खूबसूरती को, क्योंकि पा लेने पे चीजें खराब हो जाती हैं कई बार। शहरयार का शेर देखें, कहते हैं कि शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, शदीद मतलब बड़ी खतरनाक, बहुत ज्यादा शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को, मैं तेरे बहने को देखता रहा दरिया, शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। हुआ है ना आपके साथ भी कभी ना कभी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Energy. Iska bala, uska bala, saka bala. Ya bala. Murga, murga. Nabiyat bala, murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: कहाँ से रहा तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
2: कुकड़ू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट ये पकड़ा

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: कविता कॉर्नर।
3: कविता कॉर्नर
1: कि आपका ताशी सुनाए आपको आज की कविता हमारे कविता कॉर्नर में। और आज की कविता आ रही है निर्मला गर्ग जी की जानिब से। और ये कविता इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आठवीं का जो एनसीईआरटी की सिलेबस है उसमें ये कविता शामिल है, वहां पढ़ाई जाती है। कविता का नाम है फर्श पर। लिखती है कि चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है सजा जाता चिंदियां फर्श पर, मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर, मम्मी आती है बीनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर, मेहरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में जिन पे क्रैक्स पड़े हों। मेहरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। क्लास स्ट्रगल के बारे में भी है ये कविता और फर्श के बारे में भी है कि किस तरीके से एक फर्श इतना सब कुछ देखता है और उसकी रोज की जो जर्नी है वो रीसेट होती है मेहरी के आने से। और क्लास स्ट्रगल के बारे में कि जिसकी मेहनत हमारे घर को साफ रखती है उसके हाथों के क्या हाल है, ये भी दिखाती है ये कविता निर्मला गर्ग जी की। एंड आई एम ग्लैड कि ऐसी कविताएं हमारे सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Na chuskiyon mein, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची का।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपने डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। और दोस्त जिंदगी में ना वाइट और ब्लैक कुछ नहीं होता, सब कुछ वो ग्रे वाला शेड होता है ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं। हर इंसान किसी के लिए दानव होता है और किसी के लिए देवता, ये सच बात है यार। अनवर शहूर साहब का ये शेर देखें आप, कहते हैं कि बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है। हाँ हाँ जी, बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है। कितनी सटीक बात कही है। और भला भले के अलावा बुरा भी होता है, ये भी हो सकता है सच यार, और क्या। तो इसीलिए वो शेर है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, वो भी सच है। बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है। वाइट और ब्लैक कुछ नहीं है भाई, हर चीज ग्रे का शेड है कहीं ना कहीं। हर इंसान में हर तरह की प्रवृत्ति जिंदा है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ। और देखिए, ये मोटिवेशनल लाइन तो हमने कई बार सुनी है कि जिंदा दिल रहो, जी रहे हो तो जिंदा दिखो, और ये सारी चीजें बहुत लोग कहते हैं। लेकिन इसको शायरी के अंदाज से, क्योंकि शायरी ना बड़ी नॉन प्रीची होती है, क्योंकि आपके दिल को जाके लगती है। शायरी में कोई भी बात इतने मजे से और इतनी खूबसूरती से कही जा सकती है कि इंसान को समझ में भी आ जाए और उसे वो कड़वी भी ना लगे। तो जैसे ये जो शेर है, बड़ा ही खूबसूरत शेर है, मुझे तो बड़ा पसंद आया, आजाद गुलाटी साहब का शेर है। कहते हैं कि कुछ ऐसे फूल भी गुजरे हैं मेरी नजरों से, कुछ ऐसे फूल भी गुजरे हैं मेरी नजरों से जो खिल के भी ना समझ पाए जिंदगी क्या है। वाह जी वाह। अब देखो, अब किसी को समझाने बैठते कि यार जिंदा हो तो जियो और ये करो और वो करो, तो बड़ा प्रीची हो जाता। वो बोलता है सुनो यार, आगे बढ़ो। लेकिन हल्का सा एक शेर सुना दो उसे, कह दो कि कुछ ऐसे फूल भी गुजरे हैं मेरी नजरों से जो खिल के भी ना समझ पाए जिंदगी क्या है। वो बोलेगा यार कुछ भी हो, बात तो सही कही है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने दाशी के साथ। और ऐसी कोई लाइनें आपके भी बड़ी करीबी हैं क्या, जो कि जिंदगी के फलसफों को बस चंद लाइनों में कह जाते हैं और एकदम दिल को बात लग जाती है कि नहीं, बताएं मुझे। अगर हाँ तो मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची दाशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Burka, burka. Nabit bala burka.
1: Mirchi burka. Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस कर रहा है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें देख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
1: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
1: आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना
2: भैया,
1: पैसे
2: भाड़ मगा। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला,
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Listener MI, back to back gana sunega.
8: Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
9: Radio Mirchi, it's hot.
6: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और सच बताएं तो ऐसे मौकों पे ना समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और मेरे ऑफिस की ना दो लिफ्ट है। जिन मोहतरमा से हम एक जमाने में प्यार किया करते थे वो एक दिन ऑफिस आई और मेरे आने के साथ ही दूसरी लिफ्ट से नीचे चली गई। दोस्त ने बताया कि वो आई थी और मैं भी उससे ना मिल पाने को मान ही चुका था कि लिफ्ट खुली और वो उससे निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। कहती थी कि कुछ सामान छूट गया। मुझे जाज़िब कुरैशी साहब का शेर याद आता रहा कि कुछ मेरे धड़कते हुए दिल ने भी पुकारा, कुछ मेरे धड़कते हुए दिल ने भी पुकारा, कुछ आपको बाजार में धोखा भी हुआ है। कभी आपके साथ भी हुआ क्या ऐसा? अगर हाँ तो क्या किस्सा रहा? मेरे ख्याल से बड़े मजेदार रहे होंगे। शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और जाते जाते मिर्ची महफिल में अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका दाशी आपको नजर करे एक नगमा जो मेरे जहन में क्या बताऊं बड़े दिनों से टहल रहा है। हाँ जी, भूपिंदर जी की आवाज में ये जो नगमा है

ऐसा ही एक और गजलों, नज्मों, किस्सों, शेरों का कारवां बांध के लाएंगे अगले हफ्ते आपके लिए। अब आप ट्यून इन कर सकते हैं मिर्ची महफिल ऑन द गाना ऐप एज वेल। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: किशोर कुमार के सबसे बड़े बेटे अमित कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, और उनके एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट उन्होंने एक टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: एक गाना था, मैं ही गाया था, रोज रोज आंखों तले। वो गाने में तीन अंतरे आशा जी की थे, टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के मंदा की नहीं गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक अंतरा आया, थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार। तो किशोर दा का नाम सुन के डड्डू से किशोर दा क्यों, ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। पंचम दा ने फोन किया और बाबा ने उठाया, हेलो आपका लड़का क्या कर रहा है? बोले तो मालूम नहीं सोता है वो, बोले उसको जगाए उसको गाना मिल गया। तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ, बोले आपका बजट ही नहीं है।
0: ये बढ़िया था फिल्म मेकर्स का है, बजट है तो पिताजी को साइन कर लो, बजट नहीं है तो बेटा जी को साइन कर लो। खैर ये सब छोड़ो, ये सुंदर सा गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: बेटा नवनीत।
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लीजो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल भी आंखो है, एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है। रेडियो मिर्ची।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: पिता किशोर कुमार के साथ उनकी शुरुआती यादें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या मेमोरीज शेयर की थी।
1: जब 3-4 साल की उम्र में मुझे पता चला, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, के यस ये पेड़ है, ये पौधे है, ये है, अरे ये तो बम्बई है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, छोटा सा घर है, और ये आदमी जो मैं देखता हूँ रोज गाड़ी में आता है और आधी मूछें लगा के मेकअप करके आके खाना खा के लंच टाइम में चला जाता है, ये कौन है, ये कौन है। तो सोचता रहता था कौन है ये, कौन है। तो एक दिन मैंने अपने माँ से कहा कि कौन है ये आदमी, माँ ये कौन है, तेरा बाप है। ऐसा मुझे बचपन में धीरे धीरे जब होश संभाला तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज माई चाइल्डहुड, दिस इज माई डोमेन, यू नो ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो ये मुझे याद है छोटा छोटा, मतलब कि यू नो देव साहब आते थे काफी पिताजी से मिलने वो उस वक्त, यू नो दीज आर थिंग्स आई रिमेम्बर।
0: वेल अमित कुमार की कुछ और ब्यूटीफुल मेमोरीज साथ में उनकी जर्नी भी सुनेंगे यहीं पर मिर्ची पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और फिलहाल तो ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, मूवी का नाम लव स्टोरी।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: अमित कुमार जब 8 साल के थे तो उनकी मदर रूमा गुहा और उनके फादर किशोर कुमार का डिवोर्स हो गया, तो अमित कुमार अपनी मदर के साथ कलकत्ता में रहते थे और किशोर कुमार बॉम्बे में। फिर कुछ ऐसा मैटर हो गया कि इनकी मम्मा ने इनके फादर से किशोर कुमार से इनकी शिकायत लगाई और किशोर दा को कलकत्ता आना पड़ा। वो क्या हुआ था सुनिए, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने शेयर किया था।
1: जब मैं 17-18 साल का था कलकत्ते में उन दिनों 1970 में मैं कलकत्ते में गली गली में गाना शुरू किया। मैंने उत्तम बाबू के जो इलाका भवानीपुर जो आज भी है उनके वहाँ पे दुर्गा पूजा तो मैं गया था। तो उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग मिलके ग्रुप एमेचर म्यूजिशियंस, मैंने प्रिपेयर किए थे कुछ 5-6 गाने, बट आई हैड टू सिंग अबाउट 10 सॉन्ग्स, जिसे कहते आई शेड माई इनिबिशंस, स्टेज फ्राइड निकल गया और इतना अच्छा गाया मैं। तो वो उसके बाद मैंने जो शुरू किया प्रोग्राम कलकत्ते में, तो वो पिताजी को पता चला, माँ ने फोन करके कहा कि वो तो पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं है, इधर उधर घूमता फिरता है, आपके आप ही के गाने गाता है। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, वेरी गुड वेरी गुड, मैं आता हूँ कलकत्ता।
0: वेल, किशोर दा कलकत्ता पहुंचे और अपने बेटे को बॉम्बे लेकर आ गए। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

0: अमित कुमार जब 17-18 साल के थे तो कलकत्ता में अलग अलग प्रोग्राम्स में गाने गाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बात से इनकी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी। उन्होंने किशोर कुमार को फोन किया बॉम्बे में कि भाई देखिए आपका बेटा तो रिलीजियस प्रोग्राम्स में भी फिल्मी गाने गाता है और आपके ही गाने गाता है, पढ़ाई लिखाई ये करता नहीं है, अब आप ही आके देखिए इसको। और किशोर दा पहुँच गए कोलकाता। फिर क्या हुआ सुनिए, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: तो कलकत्ता है तो उन दिनों मेरा एक प्रोग्राम था रविंद्र सदन में। He saw the program. He came specially to see the program. So, मुझे कहा कि when you'll go on the stage, you won't get nervous, no? Because I'll be sitting in front of you. मतलब जो आई, मैं उन्होंने तो कहा मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मतलब नहीं, लेकिन क्या होगा कि तुमको disturb हो जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे को सामने सीट मत देना। तो मुझे कहीं स्टेज के पीछे कहीं बैठाओ। क्योंकि सामने मैं बैठूंगा तो कोई तुम्हारा गाना सुनेगा नहीं। तो he was right. हमने वैसे ही किया, हमने उसको जहाँ से लाइटिंग होती है ना ऊपर, वहाँ पे बैठा दिया। अब मैं गाना गा रहा हूँ, अब वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे। ही इज एंजॉयिंग। आई ब्रोक द आइस, योडलिंग किया। वो इतने खुश हुए, वो मेरे माताजी से कहा कि तो वंडरफुल, बहुत अच्छा गाता है, उसको बॉम्बे भेजो।
0: तो इसी तरह लड़का बॉम्बे आ गया अपने प्लेबैक सिंगिंग के करियर की शुरुआत करने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: 1970 की बात होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जब किशोर दा को अपनी एक्स वाइफ रूमा गुहा से पता चला कि उनके बेटे अमित कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, यहाँ वहाँ प्रोग्राम्स इवेंट्स में गाने गाते फिरते हैं, किशोर दा कलकत्ता पहुँचे, अपने बेटे का एक इवेंट अटेंड किया, उनको गाता देख कर खुश हो गए और उनको बॉम्बे ले आए। वहाँ पे क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: उसके बाद मुझे बॉम्बे लाए, यहाँ पे उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम रखा, डैडी किशोर एंड सनी अमित टुगेदर ऑन स्टेज, वेरी इंट्रोड्यूस्ड मी 1971। बोले देखो ये तुम्हारा पहला, मैं तुम्हें स्टेज पर प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ऐसा करना कि मैं गाना गा रहा हूँ तुम बजा रहे हो, तो मैं जैसे गाना शुरू करूंगा तुम वहां से उठ के आके मेरे को कंधे पे टैप करोगे और मैं घूमूंगा एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू। तो वो गाना था फिल्म दो चोर करके, एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें गाना था मेरी जान कहना मानो। तो वो जैसे वो गाना शुरू किया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हो गया, नहीं थी सेड मेरी जा मैं कहना मानो, तब तक मैं आ गया, उठ के आके तुम ऐसा कर दो घूमा, तो मैंने कहा मेरे बा

0: का एक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
1: ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गरम हूँ। अरे बाप रे बाप, हा हा हा हा हा, डर गया ना।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

0: पानी लग। टीनेज में जब अमित कुमार में सिंगिंग के लक्षण दिखाई देने लगे तो किशोर दा उन्हें कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जब बॉम्बे ले आए तो बकायदा एक सिंगिंग इवेंट में, एक प्रोग्राम में किशोर दा ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बॉम्बे आ गया पिताजी के साथ तो उनके फिल्मों में गाता था ही मैं। बाहर पूछते थे सब, लक्ष्मी जी प्यारे भाई तो सब पूछते थे कि वो गाता है, गाता है। तो लक्ष्मी जी तो कमाल कमाल का, पिताजी को बोलते थे मैंने सुना अमित गाता है। बाबा बोला हाँ वो गाता है, मुड़की उड़की मारता है। जब बाबा मुझे बोलते लक्ष्मी ने ऐसा क्यों पूछा मुड़की उड़की मारता है, तो मुझे बोला मुझे कुछ आता ही नहीं, आई वॉज रॉ यू नो। कहते मैं तो कुछ मालूम नहीं मुझे। बोले कुछ नहीं मालूम की बात नहीं, तुमको अगर गाना सीखना है तो पहले सहगल साहब का गाना प्रैक्टिस। तो मैंने बोला सहगल साहब नेजल? बोले नहीं ऐसा नहीं है, ही वॉज अ वेरी बिग सहगल साहब भक्त। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि देखो पहले से क्रिटिसाइज नहीं करने का, पहले तुम सहगल साहब के गाने सुनो, ये 3 गाने मैं तुम्हें देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करो। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि इट इज नॉट इजी टू सिंग सहगल साहब सॉन्ग। तो फिर मुझे ऐसे करते करते इंटरेस्ट उन्होंने जगाया।
0: चलिए इसी बात पे इंटरेस्टिंग सा गाना सुन लेते हैं, अमित कुमार की आवाज में, आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा है, मूवी का नाम तेरी कसम। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
4: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम

0: अरे बांगड़ू, तो संगीत सीखेगा रे। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ली 70s में जब किशोर दा को रियलाइज हुआ कि उनके बेटे में टैलेंट है, तो उसे कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। अमित कुमार ने पहले किशोर दा की फिल्मों में गाना शुरू किया। फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स जब अमित कुमार के बारे में पूछताछ करने लगे, तो ये भी पूछने लगे कि क्या वो क्लासिकल गाने गा पाएगा। एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने कहा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा एक दिन, तो वो हंसने लगे एकदम से। पिताजी के ये थे, वो भी क्लासिकल उतना मतलब वो सुनते थे क्लासिकल बचपन से बहुत। मैंने सुना कि ही यूज्ड टू गो फॉर दीज म्यूजिकल शोज आल्सो, विलायत खान साहब, बड़े गुलाम अली सब देखते थे, रविशंकर। तो उन्होंने कहा मनादा को फोन किया। तो मनादा को फोन करके बोला, मनादा मेरा लड़का बोलता क्लासिकल सीखा, तो वो भी हंसना शुरू कर दिया, भेज दो मेरे पास। मनादा मुझे देखते ही हंस रहे, तू क्लासिकल गाएगा? बोले क्यों, मैं गाने? बोले ठीक है, बट सीरियसली? बोला हाँ। तो ही अपॉइंटेड गुलाम मुस्तफा खान साहब, उनके साथ मैं 6 महीना सीखा, रिलीजियसली सीखा, लेकिन कुछ घुसा नहीं अंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला मैं क्या कर रहा हूँ? तो पिताजी बोल रहे थे, मैं बोला था ना कि तेरे पेशेंस है नहीं, इतना इजी नहीं है क्लासिकल। उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस।
0: तो ठीक है, फिर एक हल्का फुल्का लाइट सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: अर्ली 70s में प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाने अमित कुमार कलकत्ता से बॉम्बे आ गए, ऑफ कोर्स किशोर दा उनको लेकर आ गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तब इन पर धुन सवार हुई कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखना है। इन्होंने 6 महीने बड़ी शिद्दत से सीखा भी, लेकिन उसके बाद न हो पाया। पर उसके बाद हुआ क्या, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस। लेकिन पैरेलली मैं उनके साथ शोज करता रहा। एक होता ना डर, वो स्टेज का वो फ्राइट निकल गया। और फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स खुद, जैसे पहले मुझे गाना गवाया किशोर कुमार के घर के बाहर, मुझे गाना गवाया सपन जगमोहन। एक फिल्म बनी थी रामसे ब्रदर्स की, दरवाजा, उसमें गाना था। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। पिताजी आए थे रिकॉर्डिंग में, महबूब स्टूडियो में विश करने आए थे। गाना बहुत अच्छा गाना था। होश में हम कहां

0: अच्छा गाना था।
1: वेल, इनका ये गाना तो 1973 में रिकॉर्ड हुआ था और फिल्म जाके 1978 में रिलीज हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे सुनेंगे वो गाना जिसमें मैंने अमित कुमार साहब की आवाज पहली बार सुनी थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: अमित कुमार ने अपने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत अपने फादर किशोर कुमार की फिल्मों से की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बाद फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इनको अप्रोच करने लगे। सबसे पहले सपन जगमोहन ने इनसे 1973 में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने ये शेयर किया था।
1: सेकंड सॉन्ग मदन मोहन, किशोर तेरा लड़का गाना गाता है, तो पिताजी बोले जाओ मदन मोहन का गाना गाना है। आशा जी के साथ डुएट था, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था। है शाम बड़ी मतवाली, है शाम बड़ी मतवाली और आसमान पे लाली, इस लाली पे रंग तेरा, जैसा सिखाते ना, गुलाबी हो गया। मदन मदन जी, मैं गुलाबी हो, बोले बाबा बाबा कितना अच्छा, किशोर का बच्चा अच्छा गाता है। उसके बाद थर्ड नंबर वो सलील चौधरी, वो पिक्चर पता नहीं बनी या नहीं बनी मुझे मालूम। वो गाना ऐसा था, हमको किसने जाना है, हम किसी को क्या जाने, हमको किसने माना है, हम किसी को क्यों माने, वी आर फ्री यू गो टू हेल। उसके बाद एक फिल्म आई जिसमें कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट जय कुमार पाटे, उन्होंने मुझे गवाया। वो फिल्म थी जान हाजिर है, जिसमें शेखर कपूर हीरो थे, विजय आनंद गोल्डी आनंद, विजय आनंद साहब प्रोड्यूसर थे। नवकेतन की फिल्म जान हाजिर है, वो भी पिक्चर फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को बुक।
0: वेल, इन सब के बाद इनकी लाइफ में आया इनका जैकपॉट गाना, जिसके बारे में करेंगे बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: उस वक्त ऐसा हुआ कि एक दिन रिहर्सल पिताजी करने गए पंचमदा के घर, तो मुझे कहा कि तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, बड़ा चल रिहर्सल है। तो वो गया मैं रिहर्सल में, अभी भी याद है मनादा भी थे वहाँ पे, मनादा और पिताजी का एक डुएट था एक, उसका रिहर्सल। तो मैं बैठा था, तो मैं तो उन्हीं को देख रहा था, पंचमदा को देख रहा था, हारमोनियम बजा रहे। बाद में उन्होंने मुझे देखा, बोला अरे अमित कैसा है तू, मैंने सुना तू गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गाना सुना। तो मैं एकदम घबरा गया, तो मैंने गाना गाया, झुमरू ही गाया मैं, बहुत बकवास गाया था मैं, मतलब नर्वस हो गया था। तो जब वापस घर आ रहे थे तो गाड़ी में पिताजी ने कहा कि
2: तेरा चांस गया,
1: स्टार्टेड ही वाज वेरी अनहैप्पी यू नो। शाम को फोन आया, बाबा ने उठाया, अरे पंचम क्या हुआ? बोले दादा अमित को कल भेजो मेरे पास फिल्म सेंटर, तो गाना गवाना है। तो मे बी ही वाज टेस्टिंग माय वॉइस।
0: इस गाने के बारे में भी करेंगे बात, लेकिन अभी वो गाना सुनेंगे जिसमें बड़ी सारी फैमिली वाइब्स है, क्योंकि अमित कुमार किशोर कुमार की आवाज है, आशा भोसले जी की आवाज है, कॉम्पोजिशन RD बर्मन की। ये गाना लिखा है गुलशन बावरा ने, मूवी का नाम कस्मे वादे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Purani Jeans. With Charu. Only on

0: अमित कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो है बालिका वधू फिल्म का गाना बड़े अच्छे लगते हैं। सुनिए आर डी बर्मन के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बिकॉज बालिका वधू वाज बीइंग प्लान्ड फिल्म, तो उनको सचिन के लिए यंग वॉइस चाहिए था। उनके घर गया सवेरे, उन्होंने मुझे गाड़ियां बैठाया और लेके गए फिल्म सेंटर पे, गाना सिखाया एंड बड़े अच्छे लगते वॉज रिकॉर्डेड 1974 एंड में। बड़े

0: मैंने उस गाने का नाम भी रखा है माय ब्रेड एंड बटर सॉन्ग। उसी गाना से मेरा एक फाउंडेशन तो जरूर हुआ। और पिताजी बहुत पीछे पड़ते थे, जब भी कोई स्टेज शो हो तो जैसे पिताजी के बाद मुझे गाना है तो उस तक मेरा यही एक ही गाना था, तो मैं जाके बड़ा बकबक करता था स्टेज पर, अब मैं आपके सामने जो गीत पेश करूंगा ये मुझे ऐसा किया था बड़बड़ बड़बड़। और पीछे विंग्स में पिताजी खड़े होकर बोले गाओ ना, गाता कोई को नहीं इतना बकबक कर रहा। फिर मैंने बड़े चक्के तो वहां से बड़े
1: तो बड़े के चक्कर में इस छोटे को बड़े से काफी पड़े हैं। सुन लेते हैं ये आइकॉनिक गाना रिटन बाय आनंद बख्शी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग्स का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मैं खत्म, तो खेल खत्म। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: मुश्किल समय में भी सही कर्म कैसे चुने, आइए इस बात को समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: 2026 का वर्ल्ड कप हमने T20 वाला जीता, तो संजू सैमसन के बारे में बहुत बात हो रही है, और जो एक कमाल की बात है कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन टीम, क्योंकि वो न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत खराब खेले और बहुत लोग उन पे प्रश्न उठाने लगे कि इनमें वो बात ही नहीं है, T20 के लिए लायक ही नहीं है एक्सेट्रा, और फिर वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल का कमबैक किया। इनफैक्ट मुझे याद है गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनका करियर वाज ऑन द लाइन एंड ही टुक दैट मोमेंट। तो कहीं ना कहीं सेटबैक से ओवरकम करने वाली स्टोरी आई है कि भैया आप ड्रॉप्ड थे, फिर आप वर्ल्ड कप में आके कमाल करते हैं, द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट नो टू से, ये बहुत इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए।
5: एब्सोल्युटली, इसलिए कई बार कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और इस केस में तो क्योंकि वर्ड्स आर नॉट ओनली फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इट्स फ्रॉम एवरीबॉडी। मतलब जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि सारी दुनिया अगर आपको अप्रिशिएट करती है, सो व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल, अ वेरी बिग परसेंटेज ऑफ पीपल आर आल्सो क्रिटिसाइजिंग यू।
4: एब्सोल्युटली,
5: मतलब जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है, जितनी दुआएं आपकी तरफ आती
4: है, कम होती है।
5: नहीं, जैसे अभी आपने अच्छा परफॉर्म किया
4: तब बहुत सारी आती हैं।
5: तो आती भी बहुत हैं, लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं
4: तब नेगेटिव तो दुनिया भर भर के आती
5: है, वो भी आती है,
4: ज्यादा ही आती है,
5: ज्यादा आती है। तो मतलब दोनों को डील करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्रिकेटर रिंकू ने टफ मोमेंट्स में खुद को इमोशनली कैसे संभाला, आइए उनसे सीखते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि ईशान किशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जब उसका बुरा समय चल रहा था और वो सोच रहे थे कि क्या करे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब भी जिस प्लेयर से मिला उनसे सीखने की कोशिश की, लेकिन खूबसूरत बात जो उन्होंने कही कि मैंने उनको भी हेल्प करना सीखा। जब मेरा बुरा समय चल रहा था मैं लोगों को हेल्प कर रहा था कि भाई चलो आपको ड्रिंक्स मैं ले आता हूं, आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए, ही सेड उससे भी मुझे बहुत शांति मिली और मैं लगा रहा और मुझे पता था एक दिन मेरा आएगा तब मैं परफॉर्म करूंगा।
4: जब आप लोगों को हेल्प करते हैं ना बहुत दुआएं मिलती हैं
3: जी,
4: वो दुआएं आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ा देती हैं। सुनने में लगेगा ये कितनी छोटी सी बात है, मैं किसी को ड्रिंक दे रहा था, मैं किसी को हेल्प कर रहा था, लेकिन आप डिसहार्टन नहीं थे, आप कॉर्नर में बैठे नहीं थे, आपने किनारा नहीं किया, आपने होप गिव अप नहीं किया।
3: बट सिस्टर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
4: आपने वो किया जो आप कर सकते थे, अपने से पूछो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें भी दुआएं कमा ली। दुआएं तो लिफ्ट का काम करती है, असंभव जो है वो संभव हो जाता है।
3: लेकिन ज्यादातर जब बुरा समय चल रहा होता है हमारा तो हम अपने बारे में ही सोच रहे होते कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। तो ईशान किशन ने जब ये बात कही मुझे बड़ी, तो हम अपने बारे में ही सोच रहे होते कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। तो ईशान किशन ने जब ये बात कही मुझे बड़ी प्यारी लगी।
4: ये भी तो हम अपने

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: We know better, so we must do better. आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक लाइन हमेशा याद रखे, व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर। इग्नोरेंस इज नॉट अ क्राइम। हम सब हमेशा हर डिसीजन राइट लेंगे, हम हर बार जो करेंगे वो राइट होगा, लेकिन उस समय पर जितना पता था उस अनुसार मुझे ये डिसीजन राइट लगा। अगर आज मुझे लगता है कि ये राइट नहीं था
4: तो शायद मैं कुछ
3: आई कैन डिसाइड समथिंग डिफरेंट फॉर फ्यूचर। रिग्रेट नहीं होना चाहिए,
4: बहुत बढ़िया।
3: रिग्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय पर मैंने सोच समझ करके वो निर्णय लिया था। एंड समटाइम्स देखो, खेलना ही जरूरी नहीं होता है। आप वहां पर गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टीम के साथ होना। टीम को उस समय लगा कि कोई दूसरा प्लेयर है जो इस समय इस सर्कमस्टेंस में
4: बेटर
3: टीम के लिए बेटर होगा, एंड आपने चूज किया कि अच्छा आई विल नॉट प्ले, लेट दैट पर्सन प्ले। डोंट यू थिंक दैट इज आल्सो विनिंग?
4: ये सोचना पर्सपेक्टिव है। आप जो कह रही हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उस समय, क्योंकि मुझे ड्रॉप करके किस कोई और मेरी जगह ले रहा है, ये बड़ा मुश्किल होता है।
3: टीम का तो मतलब ही ये होता है ना कि सिर्फ पर्सनल नहीं सोचे, टीम के लिए सोचे। टीम, वी आर पार्ट ऑफ अ टीम, तो हमारा अंदर में हर समय इंटेंट होता है टीम जीतनी चाहिए। तो टीम जीतने के लिए अगर मुझे कभी कभी कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़े, पीछे भी जाना पड़े, That is also my winning.
4: क्योंकि finally तो T20 World
3: Cup जीते ही हम। टीम जीत रही है and I am part of the team, तो हम जीते ही ना।
4: Very nice.
3: तो वो एक complete, हर एक का उस समय पर important role होता है। हमारे लिए जज करना easy है। I think कई बार नहीं खेलने में भी हम जीत जाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on मिर्ची, it's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से कैसे रिप्लेस करें ताकि जिंदगी हल्का महसूस हो, आइए इस नजरिए को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर ईशान किशन ने जब बोला ना कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था तो मैं ये भी देख रहा था कि मैं दूसरों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो उस बात में मुझे एक खूबसूरत बात ये भी लगी कि जब वो ऐसा सोच रहे थे वो एक्चुअली नेगेटिव थॉट से बाहर जा रहे थे, क्योंकि जब भी मेरे को मौका मिला, एक तो मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे टिप्स ले रहा हूँ, लेकिन बाकी समय में ताकि मेरे दिमाग में और कुछ फालतू की बातें ना चलें, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं दूसरों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो आपने नेगेटिव को भी माइनस कर दिया और सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही रह रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी
4: है। बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार हर चीज करके ही नहीं आप सीखते, कई बार बेस्ट प्लेयर्स के बीच में होने से, उनसे बात करने से
3: बहुत कुछ सीखते हैं,
4: उनको ऑब्जर्व करने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने वाला ना कहीं से भी सीख लेता है।
3: बहुत बढ़िया।
4: सीखने वाला कहीं से भी और किसी से भी और किसी भी मोड़ पर लाइफ में सीख लेता है।
3: और कंप्लेन करने वाला किसी भी मोड़ में किसी भी चीज से कंप्लेन कर सकता है।
4: ये एटीट्यूड है। कई बार सब कुछ परफेक्ट होता है तो भी व्यक्ति उसके अंदर कमी ढूंढ लेता है
3: जी।
4: और कई बार सब कुछ इम्परफेक्ट होता है, वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ विशेषता ढूंढ लेता है। ये एक तरह का एटीट्यूड है। मतलब आपने अगर चश्मा ही काला पहना है तो सब काला ही दिखाई देगा। और अगर आपने चश्मा विशेषता देखने का पहना है तो उसके अंदर सारी कमियां होंगी तो भी आपको एक विशेषता देख लेंगे। इसीलिए तो आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव, आपका एटीट्यूड, आपका सोचने का तरीका। इनर वर्ल्ड को अगर हम पॉजिटिव करते हैं ना तो हमारी बाहर की सृष्टि भी चेंज होने लगती है।
3: वेरी नाइस।
4: पर हम वेट करते हैं बाहर सब कुछ ठीक हो तो हम खुश होंगे।
3: सही बात।
4: तो वो फिर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: प्रीति सिंह का सवाल है कि कभी कभी लाइफ में हम बहुत लो और डीमोटिवेटेड क्यों महसूस करते हैं, लेकिन किसी और दिन हम बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, तो इसका कारण क्या होता है?
3: इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो हम फील कर रहे हैं वो टोटली डिपेंडेंट है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर बाहर के फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं
2: तो हम बहुत खुश होते हैं,
3: सबने अच्छे से बात करी, सब मेरे अनुसार हुआ, सब कुछ जैसा मुझे चाहिए था वैसा हुआ, तो हम अच्छा फील करते हैं। किसी दिन फैक्टर्स हमारे अनुसार नहीं होते,
2: उस दिन दुखी हो जाते हैं,
3: क्योंकि वर्ल्ड तो हमारे अनुसार हर समय नहीं चलेगा ना। सो इफ आई एम इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स
2: तो वैसा ही रहेगा,
3: तो अप एंड डाउन रहेगा, किसी दिन खुश किसी दिन उदासी। पर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत फास्ट चेंज होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हमारी खुशी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, हमें पता है कि कभी अप है कभी डाउन है, पर हम अंदर से स्टेबल है और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। परिस्थिति का मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसको कहेंगे पावरफुल सोल।
2: वाह, तो बैलेंस्ड रहेगा लाइफ।
3: आप हर चीज में बैलेंस रहेंगे, और पावरफुल सोल संकल्प से सृष्टि बदलती है। कमजोर सोल सृष्टि का उसके संकल्प के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सब कुछ ठीक है तो अच्छा, सब कुछ ठीक नहीं है तो उदास।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: रोहन ने लिखा है कि लाइफ में खुश कैसे रहा जा सकता है, सक्सेस की सही डेफिनेशन क्या है, और एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए कैसी डेली रूटीन होनी चाहिए।
5: तीनों बहुत अलग अलग सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। खुशी के जो वो बात कर रहे हैं, अगेन एक इल्यूजन है हमारी दुनिया के अंदर। हमने हमेशा खुशी को चीजों में ढूंढा है, लोगों में ढूंढा है, जगह में ढूंढा है।
4: सही बात।
5: एक्चुअली खुशी मन की स्थिति है, मन सोचता है। कई बार वो चीजें और लोग ट्रिगर बनते हैं अच्छा सोचने के लिए
4: जी।
5: तो हमें लगता है कि इस व्यक्ति के कारण मैं खुश हूँ, इस चीज के कारण मैं खुश हूँ, वो ट्रिगर बने।
4: सही बात।
5: बिकॉज ऑफ देम आई वॉज थिंकिंग राइट, आई वॉज थिंकिंग वेरी एलिवेटेड। व्यक्ति भी हो सकता है, उन दिनों में मेरे संकल्प बहुत एलिवेटेड होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं। सो आई कैन ओनली एक्सपीरियंस वॉट इज गोइंग विद इन। वो व्यक्ति केवल स्टिमुलेंट का काम कर सकता है, ट्रिगर का काम कर सकता है, लेकिन हम महसूस वो कर रहे हैं जो मेरी सोच
4: मेरे दिमाग में। हाँ।
5: हमें ऐसी प्रैक्टिस बनानी चाहिए इरिस्पेक्टिव सर्कमस्टेंस कैसा है, व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती
4: है। सही बात।
5: उसके बाद भी अगर हमें एक आदत है थिंक राइट नो मैटर
4: व्हाट,
5: देन यू विल फील राइट नो मैटर व्हाट।
4: क्या बात, बहुत बढ़िया।
5: यू विल ऑलवेज फील ग्रेट अगर आपने इस चीज पर मास्टर कर लिया। इफ यू थिंक राइट यू विल ऑलवेज फील ग्रेट।
4: वेरी नाइस।
5: बट बाकी सब कुछ भी ठीक है, इफ यू डोंट थिंक राइट देन यू कैन नॉट फील ग्रेट।
4: एब्सोल्युटली।
5: सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, खुशी मन की स्थिति है।
4: दूसरा सवाल था सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, और तीसरा है कि पीसफुल लाइफ के लिए डेली रूटीन में क्या करना चाहिए।
5: सक्सेस की डेफिनेशन, देखो हम लोग सक्सेस को कई बार केवल एक पहलू उसका देखते हैं। माना हम देखते हैं अगर बाहर कोई अच्छा धन कमा रहा है, नाम है, मान है, शान है, हम कहते हैं सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, सोशली सक्सेसफुल है, लेकिन हेल्थ कैसी आपकी है, आप फिजिकली सक्सेसफुल हैं, और उससे भी ज्यादा आप कंटेंट हैं। कंटेंटमेंट स्टेट ऑफ बीइंग है, अचीवमेंट स्टेट ऑफ डूइंग है। तो आपने डूइंग में बहुत अचीव कर लिया,
4: लेकिन आपकी मंशा शायद अच्छी नहीं है, तो फिर फायदा क्या?
5: तो फिर आप उसको भी सफल नहीं कह सकते ना, क्योंकि अगर आप खुश ही नहीं है तो आप उसको सफल कैसे कहेंगे। तो आप खुश भी हैं, आप स्वस्थ भी हैं, आपके रिश्ते भी ठीक हैं, और आप बाहर की दुनिया के हिसाब से फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, उसको हम कहेंगे टोटालिटी में होलिस्टिकली उसको कहेंगे कि सफल है।
4: और पीसफुल लाइफ जीने के लिए कैसी डेली रूटीन होनी चाहिए?
5: पीसफुल लाइफ जीने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें बीइंग और ह्यूमन दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। एक लाइफ में हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। हमें से मेजॉरिटी लोगों का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वेल्थ पर रहता है, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं और वो आ जाती है, और वो गलत नहीं है, उसके बिना भी जीवन नहीं चलती। लेकिन बाकी जो दोनों पहलू हैं, एक हेल्थ और दूसरा हैप्पीनेस, उसमें कभी हम थोड़े से इतने केयरफुल नहीं
4: होते।
5: थोड़ा थोड़ा हेल्थ के प्रति होने लगे, थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए निकालेंगे, डाइट के ऊपर ध्यान देंगे, तो वो फैक्टर भी ठीक होने लगता है। लेकिन हैप्पीनेस जो वो पीसफुल लाइफ की बात कर रहे हैं, वो अगेन वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप उसके लिए डेली कुछ अच्छा सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, थोड़ा समय भगवान को याद करते नहीं है, मेडिटेट करते नहीं है, वो पीसफुल लाइफ नहीं हो सकती। मटेरियलिस्टिक लेवल पर
4: हो सकता है
5: आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन पीसफुल होना जरूरी नहीं है। जो कंफर्टेबल है वो खुश भी है, ये जरूरी नहीं है। खुशी मन की स्थिति है, और कंफर्ट फिजिकल कंफर्ट है
4: जी।
5: तो आप फिजिकली बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं, पर खुशी जब तक आपने मन का ध्यान नहीं दिया, मन को शक्तिशाली नहीं बनाया, मन के ऊपर मेहनत नहीं करी, तो पीसफुल लाइफ नहीं हो सकती।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: इससे सीमा जैन का सवाल आया है कि अगर लाइफ में सभी लोग हमारे खिलाफ हों तो ऐसे समय में हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए।
3: थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि सब अगेंस्ट क्यों है। ये बात तो मैं समझ सकती हूँ कि हम कुछ भी करते हैं तो कई लोग हमारे फॉर होते हैं, कहीं अगेंस्ट होते हैं, कहीं सहयोग देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, which is okay.
2: सारे अगेंस्ट हो,
3: सारे अगेंस्ट होते हैं तो कई बार हो सकते हैं हमारे अंदर भी फॉल्ट है और हम शायद उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। सारे अगेंस्ट होना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है। ताकि ये जरूर है कि आप कभी भी कुछ करते हैं तो कुछ अग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, दैट इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल।
2: बिल्कुल।
3: और अग्री डिसएग्री एक अलग बात होती है, अगेंस्ट तो ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें क्यों वो अगेंस्ट हैं, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करें। देखो, हर चीज में लोगों की दुआएं भी सफलता दिलाती हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: उनका हमारे से संतुष्ट होना भी जरूरी है। हम सही कर रहे हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर कम से कम हम उनको कन्विंस करने के तो कोशिश करें। अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर भी फॉल्ट हो, तो रियलाइज करके, चेक करके चेंज करने की जरूरत है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: इट्स 7:30 AM। मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सुजीत ने सवाल भेजा। सिस्टर कहते हैं कि विद्यालयों में हमें सिखाया जाता है कि जीवन में नैतिकता और कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जन्म से गंभीर बीमारियां होती हैं उनको, उनके साथ गलत घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, तो लोग पूछते हैं कि उस समय परमात्मा कहाँ होते हैं। जब बच्चे सही गलत भी नहीं समझते, उनके साथ ऐसे कर्म होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या वो उनके कर्मों का परिणाम है या परमात्मा की इच्छा है? वो ऐसे सवाल उठने पर लोगों को क्या समझाया जाए ताकि वो परमात्मा को दोषी ना ठहराएं और सही दृष्टिकोण समझ सके।
3: जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक्चुअली हमें उस बच्चे के लिए दुख होता है। हमारा जो एक नेचुरल संस्कार है वो कंपैशन है, रहम है। किसी के साथ भी बुरा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन फिर ये भी एक सत्य है कि जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। बस फर्क ये होता है कि जब कॉस्ट्यूम बदल जाता है ना, तो हमें याद नहीं रहता। अगर वो उसी समय पर हो, जैसे अभी आज कोई बच्चा बारिश में खेल रहा है और वो कल बीमार हो जाए, तो आपको कभी आश्चर्य नहीं लगता। आप कहेंगे मुझे तो पता था कि ये होना है। अब ये छोटी बात है, कोई लंबा समय से हैवी ड्रिंकर होता है, फिर किसी दिन उसका लिवर खराब हो जाता है, 40 इयर्स के बाद होता है, समझो। लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि मुझे तो पता था, डॉक्टर ने भी कह दिया था। आपको सरप्राइज नहीं होता क्योंकि कॉज और इफेक्ट सामने सामने दिखाई दे रहा होता है। डिलेड भी है लेकिन सामने सामने दिखाई दे रहा है। पर कभी कभी कॉस्ट्यूम छूट गया। कर्म कॉस्ट्यूम ने नहीं किया है, कर्म आत्मा ने किया है। इसलिए पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं कहते। आज महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे कर्म करे, देश को आजादी दिलाई, हम महात्मा शरीर नहीं कहते, महान आत्मा कहते हैं।
2: हाँ।
3: तो कर्म आत्मा करती है। आत्मा ने कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर लिया, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा क्या किया है। आज आपको इस सृष्टि पर लोग गलत गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। किसी के साथ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश गलत करते हुए दिखाई भी तो दे रहे हैं ना। और फिर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो गलत करते करते शरीर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहते हैं देखो सारा जीवन गलत किया, इनके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। अब वो फिर किसी छोटे बच्चे के रूप में आता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं इसने ऐसा क्या किया। बट द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड इज कर्म। दैट इज द ट्रूथ, दैट्स द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड। पर कॉस्ट्यूम देखते हैं तो नहीं समझ में आता। कर्मा सोल करती है, सोल इज ऑन द जर्नी, इसे स्टार्ट ही कैरी फॉरवर्ड से होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, क्या हाल चाल है मेरी दोस्त वाली ट्राइब। मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, योर ओनली प्लेस है जहां पर तुम्हारी चाय ज्यादा गर्म है और गॉसिप इज गर्मा गर्म और आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स आर सुपर डुपर गर्म। अब वेदर यू आर स्टक इन ट्रैफिक या फिर स्प्रिंटिंग टू कैच द ट्रेन या फिर प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम व्हाइल स्टिल हंटिंग फॉर मैचिंग सॉक्स, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली अगले कुछ घंटों तक कंसिडर मी योर मॉर्निंग बेस्टी। ऑफ कोर्स आई एम। यहाँ पर होगा ब्लॉकबस्टर म्यूजिक, फिल्मी मस्ती, फन कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें और ढेर सारी अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ इसी शो पर जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। तो वॉल्यूम को करो फुल, स्माइल रखो ब्यूटीफुल और मेरे यानी कि प्रिस्सिला के साथ चिपके रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Burga, burga! ¡La virgo a la burga! ¡Mirchi, burga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló?
2: हेलो
3: हाँ
2: बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सर यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तो कहाँ करा है तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू को
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot
6: yep hot
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: There's nothing like the magic of live theatre.
15: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
14: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Centre, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PriyogTheatre.com.
16: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
19: Batting to काफी सारे करते हैं. Virat एक ही होता है.
10: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
19: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
17: एक ही होता है
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माई दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो एक मिनट के अंदर चलते हैं टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए। सबसे पहले आज का दिन जो है वो है इंटरनेशनल डे, यानी कि किसिंग डे। मतलब एक वो दिन जब गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के साथ इमोजी बजट ऑफिशियली डबल हो जाता है। लेकिन 6 जुलाई सिर्फ प्यार का दिन नहीं है, बल्कि आज के दिन बहुत कुछ और भी घटा था। 1536 में सर थॉमस मोर को एग्जीक्यूट किया गया था। 1942 में एक यंग गर्ल एन फ्रैंक और उनकी फैमिली एम्स्टरडैम के एक सीक्रेट एनेक्स में छुप गई थी, उनकी डायरी किया गया था। 1942 में एक यंग गर्ल एन फ्रैंक और उनकी फैमिली एम्स्टरडैम के एक सीक्रेट एनेक्स में छुप गई थी, उनकी डायरी आज भी दुनिया को होप और ह्यूमैनिटी

0: 2006 में नाडुला पास 44 साल बाद ट्रेड के लिए दोबारा खुला. एंड दैट्स इट, वी कम टू द लास्ट स्टॉप ऑफ टाइम ट्रैवलिंग जर्नी. अब आगे आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो तुम, फटाफट से मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
1: हो पाएगा कौन बोला कौन.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
8: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Oak Tree Road lo, best diamond jewelry kosam search istunnara, Krishna Jewelers me, exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Iselin.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
16: It's 8:30 AM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Yeah.
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट.
1: और फीफा वर्ल्ड कप ने कल रात लिटरली फुल पैसा वसूल ड्रामा दिखाया है. सबसे बड़ा शॉकर था, ब्राजील इज आउट. नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हरा दिया और हीरो बन गए अर्लिंग हालैंड. आज सुबह से उनके रील्स और वीडियोस वायरल हो रहे हैं. 2 late goals, मतलब बंदा लास्ट मिनट असाइनमेंट भी डिस्टिंक्शन से सबमिट करता है. ब्राजील के पास पहले लीड लेने का गोल्डन चांस था, लेकिन ब्रूनो गिमारेस पेनल्टी मिस कर गए. एंड में नेमार ने स्टॉपेज टाइम पेनल्टी कन्वर्ट की, लेकिन ऑनेस्टली वो बस स्कोर लाइन थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल बना पाए. नॉर्वे अब हिस्ट्री बना चुका है अपने फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में, और ब्राजील 1990 के बाद पहली बार इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नेमार ने भी हिंट दिया कि शायद ये उनका नेशनल टीम के लिए लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है. और एक और ट्विस्ट है, यूएस स्ट्राइकर फॉलोरन बालोगुन का 1 match सस्पेंशन फीफा ने रिवर्स कर दिया है. मतलब रेड कार्ड के बाद भी वो बेल्जियम के अगेंस्ट इम्पोर्टेंट नॉकआउट मैच खेल सकेंगे. बस अब क्या है, सारे फुटबॉल फैंस जो है वो 2 sides में डिवाइड हो चुके हैं. एक साइड बोल रही है फेयर डिसीजन है, और दूसरी साइड बोल रही है कि वार से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है. वैसे तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, फटाफट से मुझे डीएम करके बताओ. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल जलाते हैं मिर्ची, दे आर बैंगर्स फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: There's nothing like the magic of live theatre.
3: Celebrate Prayog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
2: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Centre, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheatre.com.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

Good, good, good, good, good, good. Oi, good, good, good, good, good. आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप ओए खुस खुस खुस खुस खुस ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम्हारी मॉर्निंग्स। एंड चलो पता करते हैं वेदर के क्या हाल चाल है। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 71 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्काईज आर क्लाउडी और हवा की वजह से फील हो रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। यानी कि वेदर कह रहा है स्वेटर भी मत पहनो लेकिन टी शर्ट पे भी भरोसा मत करो। और हाँ, अगर किसी काम से ग्रोसरी रन के लिए अभी तुम बाहर निकल रहे हो तो अम्ब्रेला साथ में जरूर लेकर जाना, बिकॉज बरसात एक्सपेक्टेड है, वो भी 20 मिलीमीटर्स की इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। वैसे पिछले 24 घंटे भी नहीं थे, 21 मिलीमीटर्स की रेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लाउड्स क्लियरली आज ओवरटाइम करने वाले हैं। आज का हाई रहने वाला है 78 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और लो जाएगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, एंड टेम्परेचर वुड फील बिटवीन 69 से 78 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। एंड थैंक्स टू ह्यूमिडिटी, विंड एंड सनशाइन, ये सब मिलकर अपना परफॉर्मेंस परफेक्टली दे रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्लड वॉच आज मंडे रात 8 बजे तक इन इफेक्ट है। सो अगर रोड्स पर एक्स्ट्रा वाटर दिखे तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, स्लो ड्राइव करो, सेफ ड्राइव करो, क्योंकि घर पर चाय तुम्हारा वेट कर रही है। वैसे अगर तुम वेदर से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो बिफोर योर फर्स्ट कप ऑफ चाय और कॉफी, देन हाई फाइव, वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स। और दोस्ती पक्की ऑनलाइन भी कर लो, इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची Priss is my handle name, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 647244। फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ऑफकोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम आ चुका है फॉर
2: मिर्ची आवर का थ्री.
1: सबसे पहले एक इंटरव्यू में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल को सिर्फ एक पावरफुल एलाय के रूप में नहीं देखना चाहिए और उन्होंने इंडिया का नाम लेते हुए इंडिया के सपोर्ट का भी जिक्र किया है. स्टेटमेंट ने इंटरनेशनल हेडलाइन जरूर बना दी है. नंबर टू पर रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी के फ्यूनरल प्रोसेशन को लेकर डिप्लोमेटिक डिसीजन हुए हैं और कुछ कंट्रीज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन विदड्रॉ कर ली है. डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैव टेकन डिफरेंट पोजिशंस एंड डेवलपमेंट्स पर दुनिया की नजर बनी हुई है. एंड फाइनली नंबर थ्री पर चाइना की यूबी टेक ने अनवेल किया है U1, एक AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट जो 20 से ज्यादा इमोशंस आइडेंटिफाई कर सकता है और ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशंस भी दिखाता है. लॉन्च से पहले ही इसके 13,000 से ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम और एक्स पर तो मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Milci.
1: Iscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga. La viva la Burga. Milci, Burga.
2: हेलो हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लीजो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
3: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison. There's nothing like the magic of live theater.
10: Celebrate Priyog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
9: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PriyogTheater.com.
11: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab... मिर्ची का
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की स्टोरी सुनने के बाद तुम बोलोगे भाई ये प्रपोजल था या मिशन इम्पॉसिबल। न्यूयॉर्क की आइकॉनिक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक रशियन कपल एंजेला निकोलाओ और इवान ब्यूर्कस को अरेस्ट किया गया है बिकॉज दे allegedly climbed the building without any safety gears, all for a marriage proposal which went viral. और ये first time thrill seekers नहीं है, ये दोनों दुनिया भर में extreme urban climbing के लिए famous है। इनकी love story पर Netflix पर एक documentary भी है, Skywalkers a love story। मतलब यार आम लोग ना एक दूसरे के साथ relationship में सिर्फ Netflix का password share करते हैं और ये लोग जो है इनकी documentary Netflix पर है। वैसे प्यार काफी beautiful चीज होती है लेकिन please propose में सिर्फ हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं और सेफ्टी कंसर्न्स नहीं। पब्लिक सेफ्टी और लॉज का ध्यान रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जिससे प्यार करते हो उसको प्रपोज करना और उससे कहना विल यू मैरी मी, है ना। अच्छा सच बताओ तुम्हारा ड्रीम प्रपोजल क्या होगा, बीच, बॉलीवुड स्टाइल, हॉलीवुड स्टाइल या फिर घर पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े के साथ तुम्हें पकौड़े के बीच में रिंग चाहिए। टेल मी व्हाट इज योर ड्रीम प्रपोजल। डीएम करो मुझे अभी के अभी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033647244 पर। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। One more email.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. सर्चिंग द बेस्ट डायमंड ज्वेलरी ऑन ओक ट्री.

0: достане кокя.
1: Мирчи Морнингс. Мирчи Морнингс with Priscilla. It's hot.
2: गुड मॉर्निंग, मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज यानी कि 6 जुलाई को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, तो तुम गेस करो, तुम शेयर कर रहे हो अपना स्पेशल डे कौन कौन से सेलिब्रिटीज के साथ, इनफैक्ट लेजेंड्स के साथ. चलो कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ. बॉलीवुड के लाइव वायर रणवीर सिंह, जिनका एनर्जी लेवल इज 10,000. हॉलीवुड के एक्शन किंग सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो हमें सिखाते हैं कि लाइफ नॉक्स यू डाउन बट यू ऑलवेज गेट बैक अप. और कॉमेडी के पावर हाउस केविन हार्ट, प्रूफ कि हाइट नहीं पंच लाइंस बड़ी होनी चाहिए. हिप हॉप आइकॉन 50 सेंट, जिनका नाम सुनते ही प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली शफल हो जाती है. फ्रेंच एक्ट्रेस एवा ग्रीन, लेजेंडरी मेक्सिकन आर्टिस्ट फ्रीडा कालो, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड द 14th दलाई लामा, और 90s के नॉस्टैल्जिया की क्वीन टिया और तमीरा माउरी. मतलब कि आज अगर तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है ना, यू आर ऑफिशियली अ वेरी वेरी वेरी आइकॉनिक पर्सन. और ये याद रखना कि एज इज जस्ट लाइक योर वाईफाई पासवर्ड, हर साल थोड़ी सी लंबी हो जाती है बट होपफुली इट स्टिल वर्क्स. सो फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मिर्ची मॉर्निंग्स एंड मी, विशिंग यू अ ईयर फुल ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस, अमेजिंग फूड, सरप्राइज वेकेशंस और इतनी प्रमोशंस की लिंक्डइन पर लिखते लिखते थक जाओ तुम. और अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे नहीं है और किसी और का है, तुम उसे शाउट आउट देना चाहते हो, मुझे डीएम कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS. और केक नहीं, केक की फोटो ही भेज सकते हो तुम मुझे यहाँ पर. व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033. That's 9033-647-244. Filal, stay tuned and stay hot.

0: झुमका
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। रब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं, और इससे पहले और ऊपर जाए आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पे तुम बातें कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. Priscilla here on Mirchi Mornings. और मेरे पास में है मिर्ची आवर का थ्री. सबसे पहले चाइना ने कंफर्म किया है कि उन्होंने साउथ पैसिफिक में एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है. चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा है कि मिसाइल डमी वॉरहेड कैरी कर रही थी और कंट्रीज से अपील की है कि इस डेवलपमेंट को ओवर इंटरप्रेट ना किया जाए. नेचुरली इस टेस्ट ने रीजन में स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है. नंबर टू पर पाकिस्तान से एक हार्ट ब्रेकिंग अपडेट, कराची के गुल प्लाजा फायर जिसमें 72 लोगों की जान चली गई थी, उस केस में एक 11 ईयर ओल्ड बॉय ट्रायल फेस करने वाला है. इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अलेजेड फायर मैचस्टिक से शुरू हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में मेजर फायर सेफ्टी लैप्सेस भी सामने आए हैं. इट्स अ ट्रेजिक रिमाइंडर दैट सेफ्टी रूल्स कभी भी ऑप्शनल नहीं होते हैं. And finally, number three पर ऑस्ट्रेलिया defeated England by 7 wickets in Women's T20 World Cup 2026 finals at Lords, securing their 7th title in the format. The win took Australia's combined tally across men's and women's ODI and T20 World Cups to 21. The most by any nation. Also, this is the 8th time that England have lost a Cricket World Cup final against Australia. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. Main hu Priscilla tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iskaba la puskaba la sakaba la. Rabala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
3: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: भाई। आप ही रखो यार, आप रख लो।
3: अरे यार,
2: लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी, बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी।
2: अरे अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान तुमने बनाया, ठीक है ना?
3: हाँ?
2: भैया पैसे भाड़ में गए।
3: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांतकुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
10: There's nothing like the magic of live theater.
11: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with 2 memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
10: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PriyogTheatre.com.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
14: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स aren't जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
15: Inefficient,
16: very complex,
17: clumsy or
18: confusion ही confusion.
19: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो देखते हैं आज के दिन में हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, आज थोड़ा सा लेस मेरी ही चलेगी और थोड़ा सा मोर टीम वर्क चलना चाहिए। ज्यादा पुश करोगे तो सामने वाला भी ब्रेक लगा देगा यार। कई बार लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि स्माइल से काम हो जाता है। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अगर कोई बहुत मीठा बोल रहा है तो फ्री सैंपल्स की तरह ले लो, पूरा पैकेट मत खरीद लेना। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, दे आर शार्पर देन योर गूगल रिव्यूज टुडे। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, न्यू आइडियाज एक्साइटिंग है बट टू गुड टू बी ट्रू वाली डील्स को डबल चेक करना, वॉलेट भी थैंक यू बोलेगा। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, बिग प्लान्स आर ब्रूइंग, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दी शुरू करने की बजाय स्मार्ट टाइमिंग चूज करो, स्लो कुकर पर खाना और भी बेस्ट बनता है। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, कॉन्फिडेंस तो फुल बॉलीवुड हीरो लेवल है, बस वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखो यार आज के दिन, ओवर कॉन्फिडेंस से बचोगे तो अप्लॉज और भी ज्यादा मिलेगी। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, प्रॉब्लम को ब्लैंकेट के नीचे छुपाने से वो लॉन्ड्री नहीं बन जाती है। फेस इट टुडे, यू विल रियलाइज इट वाजंट एज स्कैरी एज योर इमेजिनेशन मेड इट। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन, लकी नंबर इज 18। And that's it for Mirchi Rashi Zone Part 1. Don't go anywhere. Part 2 is coming up right your way. But uske pehle Mirchi Dar Bangers ka time hai. Mera naam hai Priscilla. This is Mirchi Mornings. Fatafat se mujhe follow karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: मेरा नाम है प्रिसिला. वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर अब बारी है राशि जोन पार्ट टू की.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी तुला राशि, हर कॉलीग ऑफिस बेस्टी नहीं होता, थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस ही हेल्दी पीस ऑफ माइंड देगा. लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज चैलेंजेस आ सकते हैं, बट यू हैव गॉट दिस. रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, और जब एक्शन लोगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेना. लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड येलो. लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सबके एडवाइस सुनना जरूरी नहीं है, कभी कभी अपना खुद का इंट्यूशन ही जीपीएस का काम करता है और उसका सिग्नल फुल बार्स पे होता है. लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे. लकी नंबर इज 11. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज सिर्फ वही प्रॉमिस करो जो निभा सकते हो. रेपुटेशन एक ग्लास की तरह होती है, टूटने में 2 सेकंड्स लगते हैं और बनाने में सालों लग जाते हैं. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 11. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, अगर कोई अचानक बहुत ही फ्रेंडली बन रहा है तो बस इतना याद रखना, फ्री वाईफाई और फ्री एडवाइस दोनों केयरफुली यूज करते रहो. जेनरस रहो, गलेबल मत बनो. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 26. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन, छोटी सी डिले या सेटबैक को ब्लॉकबस्टर ट्रेजेडी बनाने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी डीप ब्रेथ्स लो, कल तुम खुद सोगे कि इतनी टेंशन किस बात की ले रहे थे. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 17. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: अरे वाह, क्या मस्त मॉर्निंग थी. और देखते ही देखते मॉर्निंग क्लोज टू आफ्टरनून आ चुकी है. मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स. अब मेरा रैप अप का टाइम हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कोई लंबी कहानी सुनाकर जाती हूँ. अरे लंबी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन की है. एक रियल्टर ने रिसेंटली शेयर किया है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तो उन्हें करीब 3 बजे एक्टर अमिताभ बच्चन जी का मिस्ड कॉल आया और उसके बाद मैसेजेस आए. ऑब्वियसली पहले तो उनको लगा कि यार कोई स्पैम कॉल तो नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कॉल बैक किया तो उनकी बात हुई अयोध्या में एक लैंड खरीदने की. और उनके हिसाब से अगले ही दिन पेमेंट ट्रांसफर हो गई और डील आगे बढ़ गई. मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कभी कभी लाइफ का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ना स्नूज बटन के दूसरी साइड होती है. लेकिन प्लीज इससे ये मत समझना कि आज से हर रात 3 बजे फोन कॉल जो आएगी वो एक्साइटिंग ही होगी. कभी कभी वो सिर्फ कोई दोस्त होता है जो पूछ रहा होता है, यार सो रहा था क्या. एंड इसी के साथ मेरी शिफ्ट यहाँ पर खत्म होती है. अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ, बल्कि और बचा हुआ काम करने जा रही हूँ. पर बोलने का काम मेरा खत्म हो चुका है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी. मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी. तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो और मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: पता नहीं क्यों बैठे बैठे ना मुझे मेरी जिंदगी की बनाई गई पहली कॉफी बड़ी जोरों से याद आ रही है। वेल एक्चुअली वो कॉफी कॉफी नहीं थी, वो कॉफी तो एक्चुअली एक कॉमेडी शो बन गई थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And हुआ ये था बॉस कि मैं ये कॉफी बना रही थी अपनी एक कजिन के लिए जो कि अमेरिका से आई थी। अब घर में छोटे होने का ये नुकसान तो होता ही है ना कि सारा काम आप ही को दे दिया जाता है। तो जब उन्होंने डिमांड की कि मुझे कॉफी पीने का दिल है तो बोल दिया गया कि सारा तुम जाओ, तुम कॉफी बनाकर लेकर आ जाना। मैंने कहा यार मुझे तो कॉफी बनानी आती नहीं है, आई हैव नेवर मेड अ कॉफी। तो एवरीबडी टोल्ड मी कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो काम करने की आदत थी, मैं चली गई कॉफी बनाने के लिए। और मैंने कॉफी बिल्कुल मम्मा के स्वाद अनुसार बनाई। जो कॉफी मम्मा हमारे लिए बना के दिया करती थी ना, वही कॉफी वैसी की वैसी कट कॉपी पेस्ट मैंने अपनी कजन के लिए भी बना दी। रिमेम्बर शी इज एन अमेरिकन कजन जो ब्लैक कॉफी पीने की आदी हुआ करती थी। उनके लिए मैंने दूध कॉफी बनाई थी। और कैसी वाली, वो जो चुटकी भर कॉफी डाला करती थी ना मम्मा हमारे लिए जब भी कॉफी बनाती थी, बिकॉज ये कॉफी तो बेबीज कॉफी थी ना, वैसी ही कॉफी मैंने अपनी कजन के लिए भी बनाई थी। और उन्होंने जैसे ही पहला सिप लिया और जो पेट पकड़ पकड़ के वो हंसी है, आज तक मेरी वो कॉफी ना एज अ जोक याद की जाती है। और आज तक जब भी हम सारे कजन इकट्ठा होते हैं ना, तो इस कॉफी के जिक्र के बिना हमारा इकट्ठा होना पूरा ही नहीं होता है। बट दिस ऑल्सो मेक्स मी थिंक अबाउट द फैक्ट कि कितने मासूम थे यार हम। एक चुटकी भर कॉफी जो हमारे दूध के अंदर डाल दी जाती थी, हम उसे समझते थे कि यही रियल कॉफी है। अब जब रियल वर्ल्ड में ब्लैक कॉफी पीने लग गए ना, तो समझ में आ रहा है कि यार ब्लैक कॉफी इज द रियल कॉफी, नॉट दैट चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी। बट हाँ एक बात तो जरूर है, वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली जो कॉफी हुआ करती थी ना, बड़ी स्वाद हुआ करती थी, क्योंकि उस चुटकी भर कॉफी पाउडर के साथ हमारी चुटकी भर उम्र हुआ करती थी और चुटकी भर जिम्मेदारियां भी हुआ करती थी। ज्यादा से ज्यादा बैग पैक कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना और सुबह टाइम पर उठ जाना, घर आकर यूनिफॉर्म चेंज कर लेना, और क्या ही जिम्मेदारी हुआ करती थी यार हमारी। लेकिन आज जो हम ब्लैक कॉफी पीने लग गए हैं, अडल्टिंग के फेज में आ गए हैं, इस उम्र में आने के बाद समझ में आ रहा है कि यार वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाले जमाने ही ज्यादा अच्छे थे। ये बड़ों वाली कॉफी पीने का क्या ही शौक चढ़ा यार जिंदगी को भी। वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, पता ही ना होता बड़े होने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो कितना अच्छा होता, छोटे ही रह जाते और वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी से ही काम चलाते, नहीं क्या। चलो जी, नाउ विद दिस मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी, ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर मैं आपसे बोलूं कि गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म का एक आइकॉनिक डायलॉग है जो हम आज तक अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं एंड इट हैज आल्सो टर्न इनटू अ मीम, तो कौन सा डायलॉग होगा वो?
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज मिड्डे मोहब्बत पर बॉलीवुड के 90s एंड अर्ली 2000 के एरा के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स जो हमारी जिंदगी में प्रिंट हो चुके हैं, छप चुके हैं, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। और ये जो डायलॉग जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र ही किया है और आपको गैस करने के लिए कहा था, वेल दैट डायलॉग इज जल्दी बोल पनवेल निकलना है। वेल, ये जो डायलॉग था जो ओरिजिनली फिल्म में वसूली भाई यानी कि मुकेश तिवारी ने कहा था, आपको पता है इस डायलॉग के पीछे भी एक बड़ी फनी कहानी है। हुआ ये था कि जब सेट पर शूट चल रहा था तो मुकेश तिवारी ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनसे पूछा कि उनका सीन कब लगने वाला है क्योंकि काफी डिले चल रहा था। तो वो बंदा जो है वो बार बार आके बताता कि सर अब, सर तब। फाइनली मुकेश तिवारी ने एक बात बोली कि यार जल्दी बता पनवेल निकलना है। एंड ही एक्चुअली मेंट इट बिकॉज उनको एक्चुअली पनवेल जाना था शूट कंप्लीट करके, तो वो चाह रहे थे कि भाई अपडेट मिले तो फिर मैं डिसाइड करूं कि पनवेल कितने बजे निकलना है। बस फिर क्या था, रोहित शेट्टी ओवरहर्ड द कॉन्वर्सेशन और उन्होंने मुकेश तिवारी को कहा कि बस सही है, बहुत सही है, ये डायलॉग अपन मूवी में रखते हैं। जाने रोहित शेट्टी को इस डायलॉग में क्या दिखा कि उन्हें समझ आ गया कि हम इंडियन ऑडियंस जो है वो पागल हो जाएगी इस डायलॉग को लेकर। एंड दिस डायलॉग वर्क्ड वंडर्स। इनफैक्ट वसूली भाई का जो कैरेक्टर है वो इस डायलॉग को लेकर और ज्यादा हिट हो गया कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। और अगर हमें भी कहीं लेट हो रहा होता है ना तो हम भी यही डायलॉग मार रहे होते हैं कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। आप बताओ, क्या आप भी इस डायलॉग का कई हद तक इस्तेमाल करते हो अपनी जिंदगी में? डीएम करके बता सकते हो मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
11: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
6: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी, ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलेनियल्स की बात की जाए ना बॉस, तो हम हैं, बाकी पानी कम है, क्योंकि हम जो पिक्चरें देख देख कर बड़े हुए ना, उनके तो डायलॉग्स में भी दम है।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड्डे मोहब्बत पर मैंने सोचा कि क्यों ना 90s और अर्ली 2000 की उन मूवीज के फेमस डायलॉग्स के बारे में बात की जाए जिन्होंने आग लगा दी थी तब भी और आज भी हमारी जिंदगी में। वो ऐसे काम आते हैं कि अगर किसी के साथ वाइब चेक करनी होती है ना, तो बस एक डायलॉग काफी है बॉस, समझ में आ जाता है कि अगला जो है वो वाइब चेक पास कर चुका कि नहीं। जैसे अभी देखो, आपके और मेरे साथ वाइब चेक कर लेती हूँ, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ये डायलॉग ऐसा डायलॉग है जो कि एक बार इस्तेमाल हुआ कुछ कुछ होता है मूवी के अंदर, लेकिन बार बार इस्तेमाल हुआ हमारी जिंदगी की मूवी के अंदर, सो मच सो दैट कि हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। और अगर कहीं किसी को कुछ बात समझानी होती है ना, तो बस ये डायलॉग बोल देते हैं। अगला अगर मिलेनियल है और वाइब चेक हो चुकी है, वो बिना आगे की एक्सप्लेनेशन के ना हमारी बात समझ जाएगा बॉस। लेकिन आपको पता है, करण जौहर ने ये डायलॉग अपनी पहली स्क्रीन प्ले में लिखा जब वो डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे थे, और उन्हें इस बात का डर था कि कुछ कुछ सुनकर लोग हंस पड़ेंगे। लेकिन SRK का जज्बा, SRK की डायलॉग डिलीवरी, उन्होंने इस डायलॉग को ही आइकॉनिक बना दिया भाई। इस डायलॉग को शाहरुख खान ने बहुत ही कैजुअली लेकिन बड़ी ही गहराई के साथ बोला है। वो डिलीवरी इतनी नेचुरल लगी ना लोगों को कि लगा कि जैसे कि कोई रियल लाइफ लड़के ने अपनी फीलिंग्स एडमिट की हो किसी बंदी के सामने। बस फिर क्या था, तब से लेकर आज तक वी हैव फॉलन इन लव विद दिस डायलॉग। और हम 90s किड्स इस डायलॉग को क्रश को इम्प्रेस करने के लिए या फिर रिजेक्ट होने के बाद स्टेटस अपडेट देने का अनऑफिशियल तरीका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज इफ सामने वाला इंसान या तो टीना है या फिर अंजलि है। अब मैं नहीं बोल सकती कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि आप मेरी बात समझ चुके हो। कमिंग अप मोर सच डायलॉग्स ऑन मिडडे मोहब्बत टुडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा।
4: नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
13: नंबर 8।

I've never cared about box office numbers. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेज मनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है.

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीते लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में, दिस इज मोमो के धागे।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ये

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ड टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है, उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर मुझको सताओ,
0: एंड देन द वन दैट बिकेम अ टाइमलेस हार्टब्रेक क्लासिक।

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंड ट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंड ट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे। इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं, लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरे ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

पुरानी फिल्मों के रोमांटिक सीन्स में से ना एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये सत्य भी सत्ता फिल्म से है, जब अमिताभ बच्चन साहब हेमा मालिनी जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इनको खास पसंद नहीं कर रही होती हैं, तो अमिताभ बच्चन इनके लिए फूलों का गुलदस्ता लाते हैं, इनके घर की बेल बजाते हैं, वो दरवाजा खोलती हैं, वो गुलदस्ता ऑफर करते हैं, वो थोड़ा गुस्से में दरवाजा बंद करती हैं, तो क्या होता है कि गुलदस्ते में से गुल फूल जो है वो दरवाजे में फंस के घर के अंदर रह जाते हैं, और दस्ता जो है खाली डंडियां कांटे जो है वो अमिताभ बच्चन के हाथ में रह जाते हैं। फिर हेमा मालिनी जी उन फूलों को देख के ऐसे थोड़ी पिघल जाती हैं और उन्हें अमिताभ बच्चन पे प्यार आ जाता है, और बैकग्राउंड में फीमेल वोकल्स हमिंग साउंड। यस, ये सीन इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गाने में है जो हम अभी सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Listener MA, back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on.

0: बहुत कम उम्र में परेशानियों ने म्यूजिक कंपोजर जयदेव साहब का हाथ पकड़ लिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। माँ बाप को कम उम्र में खो देना, घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेना, खुद शादी नहीं करना, लेकिन एक चीज जिसका हाथ जयदेव साहब ने पकड़ के रखा वो था उनका संगीत। संगीत सीखने की धुन में वो अलग अलग शहरों में भटकते रहे, फाइनली लखनऊ पहुंचे अपने गुरु अली अकबर खान से संगीत सीखने। उन्हीं के साथ बॉम्बे भी गए। गुरु चेले दोनों ने नवकेतन फिल्म्स में काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी गुरुजी का दिल बॉम्बे नगरी से भर गया। वो वापस चले गए लेकिन जयदेव साहब वहीं रह गए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नवकेतन में चूंकि मैं परमानेंट मुलाजिम था तो चेतन आनंद साहब ने बर्मन दादा से पूछा कि दादा हमारे पास जयदेव है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ जयदेव को अच्छी तरह से, तो क्या आप उसको हमारी फिल्म के लिए, सिर्फ हमारी फिल्म के लिए अपना असिस्टेंट एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि दादा के बहुत असिस्टेंट थे उसको, कहा मैं जयदेव को लूंगा। और बाद में धीरे धीरे मैं उनका चीफ असिस्टेंट बना। इसी बीच में मुझे अपनी फिल्म जोरुगा भाई, इंडिपेंडेंट फिल्म किनारे किनारे, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही।
0: जयदेव साहब ने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक क्रिएट किया लेकिन सैडली उनकी मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स चली नहीं, पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको पता है बॉम्बे नगरी से जब उनका मोह भंग हो जाता था वो हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाते थे और वापस आकर फिर औसम म्यूजिक क्रिएट करते थे। उनकी तीन फिल्मों के म्यूजिक को नेशनल अवार्ड मिला है, रेशमा और शेरा, अनकही और गमन, जिसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy और
9: confusion ही confusion.
3: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

चांदनी फिल्म से सिर्फ श्रीदेवी ही सेंसेशन नहीं बन गई थी, उनकी कॉस्ट्यूम्स, उनका फैशन, उनकी ड्रेसेस भी सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके वो वाइट चूड़ीदार कुर्ता, कमीज, लहरिया दुपट्टा, उनके शिफॉन की साड़ीज क्या पॉपुलर हुई थी भाई, खास करके उनके वो सूट। ऐसा ही कहा जाता था बाजार में वो चांदनी स्टाइल सूट दिखाना। इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है कि कोई अगर पूरे सफेद कपड़ों में ड्रेस्ड है लड़की तो उसे बोला जाता है कि तुम तो बिल्कुल चांदनी बन गई भाई। ये होती है लेगेसी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Hi.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

नमक हराम फिल्म का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये फिल्म देखो ना, असरानी साहब को एक सीन में जरूर देखना। वो कुछ होली का सीन होता है जहाँ ये भांग वांग पी लेते हैं, और वो भांग जो इनको चढ़ती है ना, वो जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो कॉमेडी सीन्स जो दिखाए गए हैं, उसमें असरानी साहब की क्या परफॉर्मेंस है। मेरा ना बड़ा कुछ बताने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसे स्पॉइलर जैसे हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी फिल्म तो मजा खराब हो जाएगा आपके लिए। देखिए, लेकिन याद नहीं आ रहा तो दोबारा से देखो, बड़ी ही मजेदार कॉमेडी है वो। है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हल्लो, ये बात तो मुझको पता ही नहीं थी।
1: मिर्ची, सुन रहे आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: ये बात कि रेखा की सिस्टर जिनका नाम राधा था, वो एक मॉडल थी और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस भी थी। इनफैक्ट उनको बॉबी फिल्म, जी वही डिम्पल कपाड़िया ऋषि कपूर वाली बॉबी फिल्म, उसमें हीरोइन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि फिल्मों में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली उनको मॉडलिंग ज्यादा पसंद थी और ये जगमग चकमक फिल्मी दुनिया वाली लाइफ इन्होंने काफी जल्दी छोड़ दी थी। अपने बचपन के दोस्त, जो बाद में जाके इनके बॉयफ्रेंड भी बने, उनसे शादी करके जाके ये यूएस में सेटल हो गई थी।
1: सही है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं।
0: इनको ये ग्लैमर चकाचौंध मिल रही थी, इनको नहीं चाहिए थी। जिनको नहीं मिलती उनको चाहिए रहती है, यही तो लफड़ा है जीवन का। जिसको जो मिलता है वो उसको चाहिए नहीं, जो उसको चाहिए वो उसको मिलता नहीं। फिलहाल मुझे चाहिए आपके चेहरे पे मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, एसलिन.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची का
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू

पुरानी फिल्मों की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट्स या इसे ट्रेंड सेटर भी बोल सकते हैं हम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में मुमताज जी ने जो साड़ी पहनी थी, वो गॉर्जियस ऑरेंज साड़ी जिसने ऐसे हड़कंप मचा दिया था फैशन इंडस्ट्री में उस टाइम। तब तक साड़ी को एज ए ट्रेडिशनल अटायर देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से मुमताज जी ने पहनी, उसमें डांस किया, उसे कैरी किया, साड़ी को एक ग्लैमरस ट्रेंडी पार्टी वेयर के तौर पे भी देखा जाने लगा। अच्छा, इस साड़ी को डिजाइन और स्टाइल किया था भानु अथैया जी ने। उन्होंने स्पेशली ये प्री प्लीटेड साड़ी बनाई थी जिसके साइड में जिप लगी हुई थी। ये इस तरह से डिजाइन की गई थी ताकि मुमताज जी इसके कम्फर्टेबली डांस कर पाए। उसका वो गोल्डन बॉर्डर, उसका वो लंबा पल्लू, उफ तौबा, एंड द वे मुमताज जी कैरीड इट, वाओ। इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग के बाद ही उस टाइम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स या फैशन डिजाइनर्स ने साड़ी के साथ अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Listener mein back to back gana sunega.
8: Back to back gana sunega.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on

0: चलिए अवतार फिल्म की बात करते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं नहीं, जेम्स कैमरन वाली अवतार नहीं, मैं तो 1983 की फिल्म अवतार की बात कर रही हूँ, जिसमें राजेश खन्ना अवतार किशन बनते हैं और उनका ये किरदार बहुत पॉपुलर हुआ था। किरदार क्या, फिल्म भी हिट हुई थी और इसका पता क्या असर पड़ा था, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वो था ना कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बूढ़े माँ बाप को। इंस्पिरेशन फॉर बागबान फिल्म एज वेल। तो ये फिल्म देखने के बाद बहुत से लोगों ने ना अपनी वसीयत बदल दी थी, जहाँ पर उन्होंने अपने घर जो है बच्चों के नाम कर दिए थे, वो वापस बच्चों के नाम से हटा के अपने नाम करवा लिए कि ये बच्चे भी हमारे साथ ना ऐसा कर दे जैसा कि इस फिल्म में किया गया।
1: इस फिल्म का ना गाना बड़ा सही था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने लिखा, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

ओए कितना क्यूट गाना कसौटी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना मेनली प्राण साहब पे पिक्चराइज्ड है। भाई प्राण साहब अपने उसूलों के इतने पक्के थे ना, उनकी एक फिल्म थी 1972 की बेईमान, जिसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से उस साल बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड पाकीज़ा फिल्म को मिलना चाहिए था, जबकि उसकी जगह इन्हीं की ये जो फिल्म थी ना बेईमान, इसके म्यूजिक को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला। ये बात प्राण साहब और इनफैक्ट बहुत से लोग उस टाइम पे, मैं आपको कहूँ, उनके गले नहीं उतरी थी, तो इन्होंने अपना अवार्ड भी लेने से मना कर दिया। होते हैं कुछ लोग, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके बारे में काफी सीरियसली सोचते हैं और उसके लिए खड़े भी होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: हा हा हा हा हा किशोर कुमार की आवाज में ये जिंदगी जीवन लाइफ की फिलॉसफी वाले गाने ना इनका एक अलग ही लेवल है। हेलो मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं क्या ये वाला गाना हो गया एक पिया का घर फिल्म का जो हमने अभी सुना, ये जीवन है, फिर जीवन के हर मोड़ पे, वो आई थिंक कौन सी फिल्म का था, झूठा कहीं का आई थिंक, फिर एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, फिर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, इम्तिहान फिल्म का, देन जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, और इन गानों का पप्पा गाना, वो गाना अब हम सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: जिंदगी

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

मिर्ची। कैसा बद्दुआ देता हुआ गाना है ये अनामिका फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अबे दिल टूटे आशिक के दिल से बद्दुआ तो निकलेगी यार, क्यों नहीं निकलेगी। अच्छा इसी बात पे हार्ट ब्रेक पे एक शायरी सुनो। हफीज जलंधरी नाम के शायर है, उनका ये शेर है। ओ दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा, अब मैं दिल को क्या समझाऊं, मुझको भी समझाता जा। वैसे मुझे ना हार्ट ब्रेक के गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है कौन से वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिन पे आप डांस कर पाओ, जैसे कि ये वाला जो हम सुनने वाले हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।

टीना मुनीम, इनकी डेब्यू फिल्म थी 1978 की देश परदेस। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन इससे पहले इनकी डेब्यू फिल्म 1977 की दूसरा आदमी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो हुआ कुछ यूँ था कि ऋषि कपूर ने टीना मुनीम को कहीं देखा था और उस वक्त दूसरा आदमी फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तो उन्होंने यश चोपड़ा साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनको टीना मुनीम का नाम रेकमेंड किया। टीना मुनीम स्क्रीन टेस्ट के लिए आई, लेकिन उस टाइम ना तो ऋषि कपूर मौजूद थे ना यश चोपड़ा साहब। यश चोपड़ा साहब की टीम के कुछ मेंबर्स मौजूद थे, कुछ टेक्नीशियंस थे, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह लिया। वहां पर कुछ बात हुई जो टीना मुनीम को अच्छी नहीं लगी और इस वजह से दूसरा आदमी फिल्म में उनका जो रोल है वो कुछ फाइनल नहीं हो पाया। एंड देन उस रोल के लिए नीतू सिंह को साइन किया गया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और सुनेंगे इसी फिल्म का गाना जो है क्या बात क्या बात क्या बात। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन.
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

दोस्तों मंडे का मूड भी ना कभी कभी बिल्कुल बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा लगता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। तो जी हाँ, कभी कभी लगता है कि हम रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप सिड है, यानी थोड़े लॉस्ट, थोड़े स्लीपी, और कभी कभी लगता है कि कल होना हो के अमन है, फुल ऑन स्माइल के साथ, रेडी टू टेक द डे ऑन। वैसे यार मंडे का ना रियल ट्विस्ट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आज का रोल क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा या फुल फिल्मी एनर्जी। तो आज का सीन सिंपल है, अपने आप को हीरो मोड में डालो तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा। और मुझे जरूर बताना कि आपका मंडे कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा होता है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और मेरा जो मंडे मोड है ना, उसके लिए जो परफेक्ट गाना है वो मैं अभी आपके लिए बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो,
2: हाँ बोलो कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तू कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: There's nothing like the magic of live theater.
11: Celebrate Priyog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
10: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheater.com. Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी को सम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
15: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, Oak Tree Road, Ezelin.
16: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
17: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
16: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना, अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बचता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप ही है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
0: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
4: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
0: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
5: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
0: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो, किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलेडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों, इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम चांदा लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई, सॉन्ग रिक्वेस्ट दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे, और ये जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम रिया, और जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट जरूर होता है जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La vida para la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
4: अरे यार
3: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
3: बताइए,
4: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
9: There's nothing like the magic of live theater.
10: Celebrate Prayog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with 2 memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
9: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheatre.com.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskuraakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad चकती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
0: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
18: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन योर लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना जबरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
5: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: Tera kya hoga, Kalya?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.

मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-donkey, have a funky time.
2: दोस्तों पता है सबसे फनी मोमेंट क्या होता है? जब हम किसी छोटी सी बात को फुल टेंशन बना देते हैं और फिर याद आता है कि यार बचपन में भी तो ऐसा ही होता था। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और याद है जब स्कूल में होमवर्क भूल जाते थे और लगता था कि बस अब दुनिया खत्म, अब मार पड़ेगी, मम्मी को कंप्लेन जाएगी। लेकिन फिर कभी कभार कोई अच्छी टीचर मिल जाती थी और वो कह देती कि ठीक है कल लेकर आना, और लाइफ नॉर्मल लग जाती थी। आज भी ना वही सीन है, सुबह जो स्ट्रेस माउंटेन लगता है शाम तक स्पीड ब्रेकर बन ही जाता है। और शायद जिंदगी का यही मैजिक है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे ही जाता है। तो बताओ दोस्तों आज का कौन सा स्ट्रेस ऐसा था जो अब बिल्कुल बचपन वाली बात लग रही है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ी हंसी, दोनों साथ में मिलके बांटेंगे। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, la burka.
2: Mirchi, burka.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: There's nothing like the magic of live theater.
11: Celebrate Prayog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
9: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheater.com.
12: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
14: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
15: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियूस, स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
17: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
18: Tera kya hoga, Kalya?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab mirchi kha.
20: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियां चल रही होंगी, किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चों को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफरों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफर का हिस्सा बनी है तो मुझे जरूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hai.
5: Confusion hi confusion.
2: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
7: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें यार पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। चल मी और इंस्टाइट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: There's nothing like the magic of live theater.
3: Celebrate Prayog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
0: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheater.com.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
9: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था, और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है, ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shada, let's do non-donkey, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियाँ बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओहो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज फ्रॉम मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता है ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepe-Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो
2: कौन
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा हो यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा हो यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
2: कुकड़ू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे
12: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा
13: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रिवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा
10: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज साथ साथ प्रिवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है काम अनेक सॉफ्टवेयर एक Zoho One गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
15: Listener mein back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारे यहाँ पे बातें हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त 10 डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओज के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

एनिमोसिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट, और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव, लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ वापस आ जाता है। और मजे की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहां लास्ट टाइम छोड़ी थी, और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी उसके लिए ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I've just realized कि चाय में जैसे मलाई तैरती रहती है ना, and you don't really want it there. आप उसे कितना भी साइड पर कर दो, it will still come back to the center कि भाई मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ रहूंगी. वैसे ही कई बार relationships में आपकी मम्मी या पापा या भाई या बहन आकर सेटल हो जाते हैं. सडनली ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप दो जनों के बीच में नहीं है, ये रिलेशनशिप तीन जनों के बीच में है, तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड और उसकी मम्मी या पापा या भाई. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मेरे साथ सिर्फ एक बार हुआ था एंड इट वॉज सो पेनफुल कि उसके बाद मुझे रूट कनाल में भी दर्द नहीं हुई थी. प्लीज शेयर योर स्टोरी विद मी एंड वी विल कंपेयर नोट्स डार्लिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.